त्रिकूट गिरिशीर्षतले सुदत्तौ कोटप्पदेव चरणौ शरणं प्रपद्ये श्री निर्विकल्पक समाधि सुसक्त योगी चित्त रविंद सुसमुज्ज्वल सौम्य सु